महारुद्र, भीम, रणेश्वर आदि भगवान को एक शिला सहर्ष अवतार को रूप में पूजिने भीमेश्वरलाई आ आफ्नो विधि अनुसार पूजा पाठ गर्दा तपसिल का विषय ध्यान दिई आफ्नो मनोकांक्षा पूरा गर्न गराउन हुन सम्पूर्ण भक्तजनहरूमा हार्दिक अनुरोध गर्दछौं।

नरेन्द्र चौधरी, चौधरी इलेक्ट्रोनिक्स चरीकोट चरीख्याङ। थप जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9844391042 र 9844061414।

0: लिसन टू मी हाय पतलो हेलो पतलो
1: ऐसा नहीं होना पूरा
0: हाय पतलो हेलो पतलो दिल मेरा वेला ले लो पतलो दिल विच जो कह देता है थोड़े दिल विच कह लो पतलो केड़े रंग दा सूट चाहिदा रेड परोसी येलो पतलो दिल दी कोठी खाली थी है बिना रिश्ते कह लो पतलो सुख दुख सुख दुख सुख दुख सुख दुख सुख दुख सुख दुख हेलो पतलो सब कुछ थोनू दे देता है हुन बस साडी लै
1: जान जान जान जान ले लो पतलो

विश्लेषण मनोरंजन साहित्य कला संस्कृति पर्यटन विकास कला जनपक्षीय आवाज हमरो रेडियो 103.4 मेगाहर्ट्ज़।

0: அப்பே
1: ஒய்னே பாடே ஷோர்ட்டி வாஸ்கு டிவி போக்கிற இண்டியோ நீக்கே அவதாரமா சாவுத்தோ
2: கட்டை பரிலைலை வாஸ்கு டிவி போக்கணுனி பிட்டி ஆப்னே டிவி பிக்கியோ அனி பனவுன ஜனலாகி கொண்டி பனவுனி புக்கா உலாட்ட ஒய்னே
1: पनि चिन्ता गर्नु पर्छ त सदर मुकाम चरीकोटबाट चरी घ्याङ जाने बाटोमा रहेको हाम्रै चौधरी इलेक्ट्रोनिक्समा लैजाऊ न त्यहाँ त तिम्रो बिग्रेको टिभी मात्र होइन कि मोबाइल घडी सबै पनि हाल्छ नि सके गर्ने
2: त्यसो भए म पनि त्यतैतिर लागिहाल्छु नि होइन त
3: अब आउनुहोस् हाम्रै चौधरी इलेक्ट्रोनिक्समा 32 इन्चदेखि माथिको एलईडी किन्दा दिसौँ सिपेमा ए हाफ फेज डी फेज एलईडी एलसीडी टिभी मोबाइल साउन्ड सिस्टम सुपथ मूल्यमा पाउनुका साथै सबै प्रकारका टिभी मोबाइल र अन्य इलेक्ट्रोनिक सामानहरू मरमत गरिन्छ यसका साथै विवाह गोष्ठी सेमिनार व्रत बन्ध र अन्य कार्यक्रमका लागि साउन्ड सिस्टम भाडामा पनि पाइन्छ टिभी मोबाइल र अन्य इलेक्ट्रोनिक सामान मरमत गर्ने ट्रेनिङको पनि सुविधा छ यसमा विशेष गरी 5 जनाको समूह बनाएर आएमा 1 जनालाई छुटको पनि व्यवस्था गरिएको छ
4: प्रोप्राइटर नरेन्द्र चौधरी इलेक्ट्रोनिक्स चरीकोट चरीख्याङ थप जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9844-39-81-42 र 9844-061-814
5: तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ हाम्रो रेडियो 103.4 मेगाहर्ट्ज

0: भीमेश्वर मंदिर में दर्शन कर आने भक्त सन हार्दिक अनुरोध
1: विभिन्न धर्मावलम्बी साझा आस्था को धरोहर विश्व विख्यात श्री श्री श्री भीमेश्वर भीमसेन भीम नारायण भीम भैरव भगवती महाकाली भगवान बुद्ध किरातेश्वर महादेव महारुद्र भीम राणेश्वर आदि भगवान को एक शिला सहर्ष अवतार को रूप में पूजिने भीमेश्वरलाई आफ्नो विधि अनुसार पूजा पाठ गर्दा तपसिल का विषय में ध्यान दी आफ्नो मनोकांक्षा पूरा गर्न गराउन हुन संपूर्ण भक्तजन हार्दिक अनुरोध गर्दछौं।